योगे तरस पिया में रामत होए सतगुर सचिन मिलया नानक नाम लेता जीवान तन मन तेवे हरिया पौरी तित तू समरत जित कोई नाय ओ ते तेरी रख अग्नि उद्र माह सुन के जम के दूत नाय थे दे छद जाए भोजल बिकम असगा गुर शब्दी पार पाए जिनको लगे प्यास अमृत सही खाए कल में एह पुन गुण गोविंद गाहे सब से नो कृपाल समयाल शाह शाह वीरता कोय न जाए जे आवे तू द आए। श्लोक महला पांचवा अंतर गुरु आराधना जीवा जप गुरु नाव नेत्री सतगुरु फेंकना श्रवणी सुनना गुरु नाव सतगुरु सैती रत्या दरगे पाया ठाव कहो नान कृपा करे जिसनो ए वत दे जग में उत्तम काज विले कई के महला पंजवा।